0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय

0: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-0-50-49-451।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएक लाख किसान हुक्रन, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
6: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई।
5: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी, खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
6: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई, व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी।
5: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी, आगे बढ़ाई हो बढ़ाई लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली, वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
6: थप आवश्यक सर सलाह व जानकारी के लाग लगभग संगे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय व स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
5: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई। कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई।
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी।
2: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाई लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्यक लाग प्रयास करी वो कराई।
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।
4: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
5: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
4: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
5: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
6: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
4: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
5: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
6: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9816 14 16 99।

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता
2: सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न. यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है. इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं. और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं. साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है. बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है.
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो.
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है. बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके. संचालक पूरन चौधरी. संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697.
3: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए. खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है.
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है. जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है.
4: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं. हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है.
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है.
4: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465.
5: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेज में भर्ना हुने होला?
6: ल है बधाई छ. अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि.
5: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न.
6: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ. दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ.
5: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु.
4: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना. उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ.
5: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित. ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि. थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98580-36577, 98580-28195 र 98580-36811. नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार.

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: बहुत देर कर दी आने में।
1: कुछ ना देर कर दी, आप अपन विज्ञापन बाजार में लगे हो, हमका खाली कहा थी कि देर कर दी, देर कर दी।
0: गाना ना सुने हो? मैं देर करता नहीं, देर हो जाती।
1: गाना तो अब सुनबे ना, जब आप सुने मौका दे हो, अभी तो शुरुआत भुआ कार्यक्रम सुने का, अब पता चली कत्ता आप सुनाई हो।
0: हम जो है गाना का सुनाए रहे, मगर आप पता नहीं सुने हुई हो कि ना सुने हुई है। हाँ, ये कौन गाना रहा है, कलिया ना बिछाना राहों में मेरी सखी आने वाली है।
1: ये गाना तो हम नहीं सुने रहे, अगर गाना है तो आप तुरंत अब हम बजा के सुनाने श्रोता। बात के बात है भाई, बात पानी के पानी हुई जी। हाँ। कि ऐसे अगर गाना रहा है तो आप ये गाना हमका सुनाए के अब दिखायो, ठीक है? आप गाना कोई दूसरे का तीर गाओ, फिर मैं सखी का ले आओ बीचे में, ये बात तो गलत है भाई।
0: नहीं तो वो जैसे जो गाना गावा हुई है ना, तो वो जो है उमा बोल कुछ और है, लेकिन हम अपने सखी खातिर गाए ना।
1: गाए हो नी,
0: अब वही चीज
1: अभी तो गाए हो ना। हाँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन गाना आप गाए हो हमरे खातिर, कहा जाना की आप सुनाए गाए कहा जाता है,
0: सुनाए रहे हैं।
1: चलो आज हमने सखी के गाना सुना, मूड है, चलो सुनाए दीजिए।
0: सुनो ना आप, पहली बात तो जब आवत रहो तो जो है गाना सुनाए, लेकिन आप सुन आवत आवत तू गाना बंद होगा, क्या कि आप आ चुके रहो ना, इसके वजह से। अब इसके बाद क्या है, बहारो फूल बरसाओ। अच्छा, मेरी सखी आई है,
1: आने वाली है, कहीं तो आई का है,
0: कहीं
1: मतलब जब आए तो ये गाना बंद कर दी। चलो कोई बात नहीं है, मतलब पहले आप लोगों का सुना रही हैं गाना कि मतलब हमार सखी आवे वाली है तो गाना सुनाई दी, लेकिन जब सखी वहाँ सुने वाले जगह पहुँचा थे तो हमार सखी गाना बंद कर दी ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी आवाज में सुने के मिला है ना गाना, ये सबसे बड़ी बात है।
0: अच्छा, तो
1: हाँ ये बड़ी बात है कि आपके आवाज में कि हमारे कितने फूल बरसाए रहे, हमें बिछाए रहे हैं,
0: आपके पीछे भी फूल है, स्वागत के लिए।
1: चलो ठीक है, धन्यवाद है,
0: दस्तावेज वहाँ पर रखा है,
1: अब पूरा फूल ही फूल है, स्टूडियो भर में फूल ही फूल है, तो आज फूल के बहार है श्रोता, और फूलन के ऊपर आप लोग का याद करे चाह जाते हैं कि आज कार्यक्रम घर अंगनामा हम दोनों सखी पहले से चिल्ला था आप लोग के सामने आए भगा है, और कार्यक्रम घर अंगनामा आप लोग भी साथ दिया जी 1 से 3 बजे तक। तो ये कार्यक्रम घर अंगनामा आप लोग जाना जाते हैं कि कोई ना कोई विषय वस्तु के साथ हम लोग जुड़े रहे थे, तो आज भी है हम के ज्यादातर हम लोग के सखी महिलन के ज्यादा जरूरी चीज है, ध्यान से सुना जी, कैसे आज त्वचा के बारे में है, मेकअप के बारे में है, तो जैसे जाड़ा के मौसम तो चला गवा सखी।
0: हाँ,
1: अब आवा गर्मी के महीना, अभी गर्मी महीना में हम लोग अतः पसीने पसीना हो जाते, लेकिन लगन बंद नहीं रहा था, चारों तरफ शादी बिहार रहा था ने, तो मेकअप के बड़ा जरूरी रहा था, तो मेकअप से पहले तो हम लोग के जो छाला रहा था, त्वचा रहा था, अब माँ ये पसीना माँ कैसे चेहरा के देखभाल करा जाए, है नी, कैसे सुंदर बना जाए,
0: कैसे सुंदर बना जाए, हर सुंदर होए खातिर हम लोगन के जिज्ञासा।
1: हाँ, और चेहरन के दागन के पीछे हम लोग इमा ज्यादा टेंशन में हो जाए थे, कैसे गर्मी के महीना में बहुत पसीना और पोछत पोछत का होता चेहरा में, कई प्रकार के दाग धब्बा
0: स्किन पे भी रगड़ भी पड़ जाते हैं ना।
1: हाँ, तो ये सब कारण से आज हम लोग अपने चेहरा का कैसे बचावा जाए और कैसे देखभाल करा जाए, और वो घरेलू जैसे घर में जो भी चीज हम लोग के रसोई घर में रहा थे, किचन में रहा थे, ये सब चीजन से के उमा से दवाई बनाए पावा जाए, कैसे चेहरा का खूबसूरत बनाए पावा जाए, कहे से वो चीज में डर नहीं रहा था ना सखी की अगर फायदा नहीं करे तो नुकसान भी नहीं करा था, और जो हम लोग बाजार के जो कॉस्मेटिक मार्केटिंग से जो खरीदा जाता है मार्केट से, वहाँ कई केमिकल युक्त रहते हैं, उसे कहा होते कि अगर हम लोग के चेहरा में लगावा भी जाता है तो एक दूसरे से बातचीत करके प्रचार प्रसार देख के एड ज्यादा देखा जाता है, नहीं बहुत अच्छा इमा झइया हटावे का तीर है, इमा 24 हम लोग के मुहासा हटावे का तीर है, या फिर चेहरा का एकदम गोरा फ्रेश दिखावे का तीर है, कहीं के हम लोग खरीद लिन जाते, लेकिन चेहरा के जो हम लोग के छाला रहा थे ये अपन अपन कई प्रकार के रहा थे, जिके पास कोई का फायदा कह जाते
0: कोई का फायदा करते
1: और कोई का नुकसान कह जाते, और केमिकल युक्त ज्यादा दिन तक टिकाऊ भी नहीं रहा थे, कुछ दिन के बाद वो अपन असर भी दिखावे लगा।
0: हाँ, वो केमिकल जो मिला रहा थे उसके वजह से चेहरे पे असर दिखाए लगा थे।
1: हाँ, तो असर न दिखा हमारे सखी जैसे नाम इनके चंदा ऐसे चमका करे उजेर एकदम उजेर उजेरिया रात आई जाये रातों में मतलब उजेर रहा थे।
0: लेकिन सखी एक बात भूलत हो?
1: नहीं वो नहीं भूली थे, वो हम बाद में आई बे, लेकिन आप
0: बाद में नहीं पहले आप ही हो, तब बाद में चांदा ही है।
1: अच्छा ठीक है, तो हम संध्या भी आप लोगों के समझ आए गए हैं, तो हमारे चांद हमारे चांद सामने चंदा सखी हमारे निकली हैं। तो श्रोता हम संध्या और चंदा जी के साथ है, आप लोग भी हम लोग के साथ देते रहा जाओ, कार्यक्रम सुनते रहा जाओ 3 बजे तक है नी। तो जाना जाते तो अब क्या करी हो, अब तो अति देर से बहुत गीत संगीत सुनाए रहे हो आप,
0: आप तो
1: फिर शुरुआत करे हन कि अब आप सुना रहे हो, अब फिर कुछ सुनाए दिन जाएगी,
0: अब व्यापारी विश्राम के समय हो चुका है ना।
1: हाँ यही बात रहा, अब बाहर हो फूल वर्षा हो बात
0: तो
1: रहा है,
0: हम आपका गाना सुना,
1: लेकिन जब आए जाओ तब उसके बाद नहीं हो पावत है ना,
0: सुने ना रहो गाना ना, गाना गाए रहे ना सुने रहो ना। ठीक है, व्यापारी विश्राम जब खत्म हो जाइए हम आप बिल्कुल सुनी हो,
1: कान खोल के बैठ जाइए,
0: बिल्कुल बैठ जाओ और साथी लोग भी सुनिए गाना।
1: ठीक है श्रोता, तो आप लोग भी
0: कहा
1: ना जाते
0: आ चुकी हैं,
1: आए गए नुके मारे थोड़ा सा सहारा देखा जाए, फिर गीत सुनते फिर कार्यक्रम में आवाज आई।
0: हाँ

0: सखी
1: हाँ सखी
0: तो फूल जो 90 जन बिछाए रही हूँ
1: बटोल लियो का एको दिखाते ना एका आएगा फूलवा का करे
0: बहुत चलाक है मतलब पहले हम जैसे हम सोरेन सोचन किया बोली कि
1: आप
0: पहले गवा कहाँ गाये हुई गवा बरसाए रहे हो सारा सब बटोर के देते हैं पेड़ बना के रख दिया गया है।
1: अच्छा वही है
0: हाँ
1: वही तो हम कह नहीं फूल का हम बिखराए दिए रहे हैं बरसाए दिए रहे हैं
0: बस वही का ज्यादा मेहनत
1: ना करो
0: अब ज्यादा मेहनत ना करो कोई बात नहीं है अब इके मतलब कि हम लोग जो दो चार दिन पानी बरसा है अब इसे भी हम लोग पहले इसे हफ्ता मनावा कर रहा है कि भाई पानी बरस जाए
1: पानी बरस
0: है तो कुछ आराम भी है और हम लोग थोड़ा आज हमारे सखी भी के आज मतलब आवाज तेज है खुशी है
1: अच्छा।
0: और आज हमरे एनर्जी ज्यादा है हम खुशी है ना आवाज तेज है
1: सखी
0: हमारे कहीं ना कहीं है कि आज सखी काहे धीरे बोलो थी
1: आज
0: आप जब तक कहीं तब तक तेज बोल सकी थे माइक के काम ही नहीं है। हाँ
1: हटाई दी माइक
0: हटाई दो
1: तब
0: हाँ बस बाकी श्रोता लोग जान जाइए कि आज की मतलब
1: खाली हमें सुनवे आपकी आवाज
0: तो आप उधर से बंद कर दो तब न जाइए आवाज हटावे के पड़बे न करी लेकिन अब हम लोग बातचीत करा जाते हैं वही के साथे साथे अब ब्यूटी टिप्स कहारगा है ना त्वचा के बारे में सौंदर्य के बारे में जो कि हमारे सखी लोग सहारा देखत हुई हैं भाई कि आज के जारी मौसम में कैसे अपने आप का बचाया जाए तो सबसे पहले तो हम लोगों के पास गुलाब जल है हाँ अब गुलाब के फूल जब अत्ता बहारो फूल बरसा फूल के बाद जब आवा तो दिमाग में याद आएगा कि गुलाब जल तो हमारे लोगन के सदा बहार है कि हम लोग जब भी नहावा जाए या मुँह धोवा जाए फ्रेश हुआ जाए तो गुलाब जल चेहरा में लगा लीन जाए जिससे कहा होता है कि तरोताज़ा अपने आप का फ्रेश लागत है ताज़ा लागत है चेहरा का छुए से कहा होता है एकदम लागत है कि हाँ फ्रेश है और वैसे पसीना तो बाद में आते हैं गर्म तो है ये है और ज़्यादा पसीना आवा था आपका मेकअप करे है तो 15-20 मिनट पहले जैसे मान लो कहा नहीं है बर्फ से सेकाई कर लीन जाए लेकिन ज़्यादा न करे चाहिए सेकाई लेकिन बर्फ से सेकाई करे के बाद 5-3 मिनट के बाद आप मेकअप कर सका जाता
1: है लेकिन सखी जिसे चेहरे पे अगर पसीना आवत भी है तो वो भी एक फायदे हुआ कहा है कि मेन जो चेहरे के जो गंदगी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं रोप छिंद्र जो राहत नहीं है उसके वजह से वो जो है चेहरे के जितना पसीना की वजह से राहत है वो निकल जाते
0: हैं। फायदाजनक तो है सखी सब चीज पसीना निकलब भी बढ़िया बात
1: है
0: लेकिन बात ये रहा कि जब कोई का मेकअप करे होते
1: मेकअप करे टमे पे ना निकल जाते
0: पार्टी में जाए होते तो एक तरफ तो मेकअप करत करत हम लोग के 2 घंटा लग जाते ओके बाद वो मेकअप बहाव या निकला वो का टाइम नहीं लागत है तो टिकाऊ करे खातिर मेकअप का टिकाऊ करे खातिर बर्फ से सेकाई करे
1: ताकि मेकअप टिका रहे।
0: हाँ इके मारे बताएं वैसे अभी तो शरीर में पहले से कहा जाता है कि शरीर में पसीना निकलब बढ़िया बात हो लेकिन ज़्यादा पसीना निकलब एक के छिन में खलखल पसीना निकलब भी थोड़ा कुछ कारण हो सकता है शरीर के कोई समस्या के कारण भी
1: हो सकता है
0: और जत्ते पसीना निकले लेकिन हम लोग का पानी के वत्ते सेवन करे चाहिए चेहरा के त्वचा का चमक लावे खातिर एकदम सौंदर्य बनावे बढ़ावे खातिर भी हम लोग का पानी की जरूरत है कैसे पानी जत्ते पिया जाए छाला में चमक आवत है जिसके कारण से पानी एकदम जरूरी रहत है। और दूसरा बात रहा था कि हमारे लोग जो ये नारियल तेल रहत है नारियल तेल छाला के खातिर एकदम उपयोगी माना गया है छाला के कोई इन्फेक्शन होए कोनो समस्या होए अथवा छाला में चमक लावे खातिर हम लोग नारियल के तेल के मालिश करा जाए तो छालन में का होता है चमक आवत है। और वैसे भी अब गर्मी के महीना है अगर फेस में तेल लगावे कहा जाए तो फिर वैसे कोई फेस भी कई मेर के होते कोई कोई के तो हमेशा पसीने दिखाने
1: करते
0: और कोई कोई का होते गर्मी के महीना में थोड़ा फेस उनका ठीक लागत है जिनके फेस सूखा रहा थे उके लिए ये महीना में फेस ठीक रहा थे कहे से जाड़ा में का होते तन के मुँह सूखा फेस और भी इधर उधर चटके लागत है कुछ परेशानी लागे लागत है सूखा लागत है ऐसे में हम लोग का उस समय में तेल के नारियल के तेल के रात में मालिश करा जाए तो एकदम बढ़िया रहा थे। लेकिन इस साइड हम लोग रात में का करे चाहिए कि एलोवेरा के जेल का जब सोवे चला जाए चेहरा धोई लीन जाए लेकिन सोवे के टाइम में एलोवेरा जेल का जिसका हम लोग घ्यू कुमारी कहा जाते हैं ओका चेहरा में बढ़िया से खूब बढ़िया से लगा लीन जाए और रात भर लगाए रहा जाए तो कोई नुकसान नहीं है सवेरे उठ के आप सफा पानी से धोई सका जाते हैं जिससे चेहरा के जो भी दाग धब्बा है दाना है जो इन्फेक्शन है जैसे कभी कभी होता नहीं है कि ज़्यादा चेहरा पसीना पोछत पोछत अपने आप का काला लागे लात है ऐसा जो कालापन है घाम से वो भी हट जाते सफा हो जाते
1: हाँ इन्फेक्शन भी खत्म हो जाते। तो सखी बात बत कही के जो है अभी विश्राम दिया जाए।
0: हाँ विश्राम, हम पहले देखो चुप हो गए, कहते हम एकदम चुप हो गए आपके हाव भाव देख के कि अभी तो बाहरों फूल बरसा है, अब फिर और कुछ बरसे इके मारे हम पहले चुप हो गए हैं।
1: नहीं तो ठीक है, अब हम एक चीज और बरसेबे।
0: हाँ
1: बरसेबे का मतलब सुनेबे भी जो आप ना ही सुने रहे हो।
0: अच्छा
1: सुनेबे ठीक है। हाँ तब तक व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जाए।
0: ठीक है तब तक तैयारी के साथ हम लोग बैठे हैं सुने का तीर। चलो
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
3: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
5: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीड़ा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
7: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौड़े धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बबासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लीन, ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जाना थियो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
9: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
10: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
11: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागी

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ ही NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेयर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यतिन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेग्रा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताई दियो हमका
3: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेरे के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है
3: एक दफी सेवा करे मौका दिन जाए संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437

0: lip on ya. Extreme energy drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
2: सुनो, वहाँ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यूँ गिल्टी और तमाम मेयर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
4: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
5: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
6: हरेक सामान को खरीद में 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
5: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
6: सम्पर्क 97051148 70।
5: सोफा हब नेपालगंज,
6: विश्वासमा नम्बर 1,
5: क्वालिटी मा सबैभन्दा बेस्ट।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: सखी
1: हाँ सखी
0: तनी ये बात बताओ
1: का
0: जैसे हम लोग अरे प्यार से पूछी थे तेरे
1: पूछो
0: पूछे बताई
1: हाँ,
0: बात ये कही थे कि जैसे जब दाना आ जाता चेहरा में कोनो दाग हो जाता है तब मेकअप करत भी बहुत बेकार लागत है ना
1: बेकार लागत मेकअप करे मतलब बेकार ही जाता तब जब दाना रहा थे दाग धब्बा रहा था तो मेकअप से का होते पेंट होते पेंट लगा लो बस छिप जाए लेकिन छिप तो ना ही है
0: हाँ लेकिन उनका छिपावे करते तो मेकअप ज्यादा करे पड़ा था
1: ज्यादा करे पड़ा
0: तो वह तो हम लोग के बाद में फिर वह नुकसान दे होते है नी अब सुने हो आजकल जैसे देखा जाता है कि चेहरा में जब क्रीम लगावत है अब बाजार में जो भी मिलत है क्रीम कि चेहरा एकदम गोरहर कर देते है नी लेकिन कहा जाता है नी कचके इतना गोरहर होगा कौन क्रीम लगाई नहीं लेकिन बाद में जैसे हल्का कहूँ घाम पड़ा कुछ भरा तो पूरा लाल लाल मुंह हो जाता है फिर लाल के बाद
1: हाँ
0: लाल के बाद का होते कि फिर चेहरा करिया करिया दिखा लगता है छैया दिखाए लागत है
1: फिर बाद में यहाँ वही स्किन पतला दिखाए लगत है
0: हाँ तो यही चीज खातिर हम आपसे बात करे चाहते रहे कि ऐसा क्रीम जब हम लोगों का चेहरा के हमका लगत है कि जो चेहरा के परत होते छाला होते उसका शायद निकाल देते निकाले के बाद कुछ दिन तक तो एकदम ताजा मतलब छाला गुरहर दिखाए लागत है तो हम लोग का लागत हुई कि क्रीम गुरहर कह दीजिए है नहीं
1: लेकिन कुछ दिन तक
0: हाँ
1: इसके बाद फिर वो जो है डार्क लाल हुई है इसके लाल होते लोग फिर काला हुई लगते हो
0: छैया उतना दिखाए लागत है तो ऐसे केमिकल युक्त ऐसे जो क्रीम रहते हैं इससे तो हम लोग का बचे चाहिए और सखी आप लोग भी बचो कहे से कि सब चीजें क्या होते चेहरा और बर्बाद कह देते खराब हो जाते बरो जो हम लोग के घरेलू टिप्स हैं घरेलू नुस्खा हैं जब देखा जाए ना रामबाण दवाई आपका घी कुमारी कहा ऐसे ही रामबाण दवाई के रूप में है ऐसे हम लोगों के एक है विशेष कह के मुल्तानी माटी अब मुल्तानी माटी जो राहत है वो का हम लोग थोड़ा सा गुलाब जल में भिगो लीन जाए जैसे आप हफ्ता में एक बार या हफ्ता में दुई बार भी लगा सका जाते हैं और ये मौसम में गर्मी के मौसम में हम लोग के चेहरा का एकदम शीतलता प्रदान देते हैं और चेहरा का साफ रखत है और जो हम लोग के चेहरा में जो मतलब पड़ना था झुर्री तना थोड़ा सिकुड़न जो हो जाता है चेहरा में छाला के में उसका भी ये तान के थोड़ा टाइट कर देते हैं और चेहरा का कहा कहा जा कहा जवान लागे लगाता तो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से ताजा लागे लागा जाता है जिसके कारण से ये ना नुकसान भी नहीं करत है और हम लोगों का चेहरा खातिर फायदा भी रहता है तो मुल्तानी मिट्टी का होते कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में माटी का माना जाता है पहले के जमाने में इससे बार भी धोवत रहे आजकल तो हम लोग झंझट माना जाते हैं शैम्पू प्रयोग करे लगा जाते हैं
1: एक चीज निकला है
0: हाँ कोई का भिगोवे कोई माटी से बार धुले जिसके कारण से आदमी परेशान हुई कि जल्दी से शैम्पू उठाए बाल धुल लीस तो मुल्तानी मिट्टी का गुलाब जल में थोड़ा सा भिगो दिन जाए और गुलाब जल में भिगो के बाद उमा हम लोग थोड़ा सा का कहा जाते हैं कि गुलाब जल तो वहाँ परे है आप उमा एलोवेरा भी डाल सका जाते है और चेहरा में ज़्यादा पसीना आवत है तो आप दो चार बूंद नींबू के रस भी डाल सका जाता है ऐसे डाले से उसके लेप बना के हम लोग चेहरा में लगावा जाए जैसे कि मुंह एकदम बढ़िया ताज़ा पानी से धो लीन जाए और लगाए के तो आँखी के घेरा का बचाए के चारों तरफ आप लगावा जाए उसके बाद 15-20 मिनट के बाद जैसे माटी होते हैं सुखाए जाते ऐसे सुखाए जब तक आप लगाया रहा जाए तब तक ना ज़्यादा बोला जाए ना हंसा जाए कहे से वो चेहरा का अपने जो छाला रहा था अपने जगह में तान के सेट करत है तो आप अगर बोला जाए हंसा जाए तो कहा तो मैं सिकुड़न परा करी है ना माटी तो सुखाई जी लेकिन उतना काम ना हो पाई तो थोड़ी देर आप चुप रहा जाए 10-15 मिनट दोपहर में फुर्सत के टाइम लगाए सका जाता है अब उसका लगाए के बाद जब आप धोवा जाए तब देखा जाए कि आपका अपने चेहरा कत्ता ताज़ा नजर आए आपका जब छुई हो तो उसका अनुभव भी हुई कि हाँ चेहरा एकदम साफ लागत तना तना लागत है तो अगर हफ्ता में एक बार करा जाए तो हमेशा ही चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी आप कह सका जाते हैं लेकिन जाड़ा में का होते कि अगर आपके चेहरा में सूखापन है तो नींबू न डाला जाए मुल्तानी मिट्टी में आप थोड़ा सा हल्दी मिला के भी लगा सका जाते हैं कहा तो हल्दी हम लोगों का बैक्टीरिया मारे रामबाण दवाई कहा जाता है चेहरा में जो भी इन्फेक्शन रहा है उसका हटावत है और साथ ही साथ जो छोटे छोटे रौ रहा थे बाल रहा थे उसका थोड़ा भूरा कर देते हैं जिसके कारण से चेहरा में जो रोवा के कारण भी बहुत जना के रोवा दिखान करते हैं तो उससे क्या होता है कालापन दिखाए लागत है तो वो रोवा जैसे आप लोग ब्लीच करा जाते हैं तो गोल्डन कलर के रोवा हो जाते हैं दिखाई नहीं पड़ते ऐसे हल्दी से चेहरा का ब्लीच तना दिखाए लागत है तो ये सब चीज़ें हम लोग के अपने घर में उपलब्ध है ये सब चीज़ें हम लोग घर में बनाए सका जाते हैं और हमेशा हम लोग घर में बनाए सका जाते हैं और हमेशा के लिए रख भी

0: और सखी का हम ध्यान
1: ऐसी बात ना है सखी, आप बतावत हो जो है नुस्खा की हम लोग उपाय करके और सुंदर बना जाए,
0: हाँ।
1: तो वो चीज बताओ तो आप हम ही का बार बार का है कहा तो
0: अब क्या करे, सामने बैठी हो आप तो नाम भी चांद के तना चमकत है, आदमी भी चमकत है, तो नाम लेम को बुराई तो है ना,
1: नहीं बुराई
0: कि
1: तो
0: मतलब नाम न ली,
1: नहीं नहीं नाम लो
0: अच्छा सखी के हमारे सखी के है मतलब है कि नाम से ज्यादा मिठास सखी माँ है,
1: हाँ, सखी माँ तो है
0: तो सखी का हम कह रहे हैं
1: बातें कुछ और रहा,
0: हाँ, बात तो नहीं भुलाई गए रहे
1: हैं तो सखी, अभी सखी आजकल के दौर में का सखी के का नाम दीन है, अरे सहेली सहेली सखी तो किन हो वैसे
0: हाँ,
1: है ना, दोस्त कहा थे है ना और साथी कहा थे ऐसे से कहा थे, लेकिन जो पुराना जो सखी रहा है ना वो माँ बड़ा मिठास है,
0: बस तो वही मिठास के साथ तो हम लोग सखी से सखी हैं है ना,
1: हाँ,
0: और सारी सखी आप लोग कार्यक्रम से सुनते रह जाए, अब हमारे सखी कुछ
1: हाँ सखी
0: बहुत
1: अब
0: कहीं ना कान खोल के बैठो गाना
1: व्यापारिक
0: सुनिबे,
1: विश्राम के तरफ चला जाए पहले, इसके बाद अच्छा गाना सुनिबे हम आपका,
0: बार बार हम लोगों का यही सुना था, इसके बाद अच्छा गाना सुनिबे, कोई बात नहीं है, यहू एक टेक्नीशियन के टेक्निक रात है भाई, तब तक हम लोग जरूर बैठा जाए गीत सुने खातिर भी बैठा जाए, चला जाए फिर
1: ठीक।
2: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अंतिम भाग। शर्माजी को घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रुकिन्छ। शर्माजीले श्री एफई 550 ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
5: के तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाई आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुनु सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
6: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
7: ल है बधाई छ, अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
6: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त, अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
7: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
6: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
8: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
6: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 28 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार। आज म एकदम खुसी छु।
8: हैन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
6: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भोलि नै बाबालाई भनेर जान्छु।
8: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानु।
6: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जीएम कलेजको बीबीएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थी

0: सखी
1: हाँ सखी
0: तो का आपका जोन कहे रहे अब चेहरा में लगावे के तुमका लगा तो लगाए के आई हो का हाँ?
1: अच्छा
0: मतलब और चमके लागी
1: हो पहले अब बताए अभी हो और लगाए कब लेबे अब जब बताए हो तब बाद में लगेबे ना
0: आती देर से तो यहाँ गायब रही हूँ
1: तो गायब
0: संगीत हमका लोग का वहाँ सुनाई के लगाई अच्छा। के आप कहाँ चले गए रही हो
1: हमका चले गए रहे हम चले गए रहे तो आपका ही लगा कि हम
0: नहीं हम सुने रहे कि झोला में रखे हो आप मुल्तानी मिट्टी पहले से
1: झोला में ही छोड़ गए रहे सखी हाँ अब बाद में करबे इत्मीनान से
0: इत्मीनान से
1: हाँ मतलब जैसे अभी अब ऑफिस में है काम धाम करी थे ना
0: हाँ।
1: दिमाग से उतर जी है तमाम काम रहा थे नहीं के वजह से नहीं अब घर पर
0: घर पर ठीक
1: हाँ।
0: है कोई बात लेकिन
1: घर पर हम, हो या जहाँ जहाँ
0: हमका शंका लागत
1: तो चाहिए ना
0: ना हमका शंका लागत रहा हाँ। है कि आप इधर से खिसकी हो मतलब तो ट्राई करे चली गई रही हो कि हाँ हम सखी कहीं नहीं तो फिर हम लोग इका ट्राई करके देखा जाए लेकिन कोई बात नहीं है जो है रामबार दवाई है आप ट्राई करा जाए चाहे ना करा जाए बाद में करा जाए लेकिन ये मौसम के खातिर अगर चेहरा में दाना है
1: हाँ।
0: तो आपके ये जो घी कुमारी एलोवेरा होते है और साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी होते है ये सब चीजें बहुत ज्यादा फायदा जनक रही
1: अच्छा मुल्तानी मिट्टी में जो एलोवेरा जेल मिलाई के
0: हाँ मिलाई सका जाते है
1: लगा
0: और सबसे ज्यादा उपयुक्त कह रहा था कि हम लोग गुलाब वहाँ पानी तो डलहीन पड़ा था तो पानी के साथ साथ एक चम्मच गुलाब जल भी डाला जाए जिससे क्या होता है कि तरो जो कहा ना ताजा एकदम महसूस होने लगा था अपने आप का
1: ताजा महसूस बासी ना लगी फिर चेहरा
0: हाँ तो आप बासी बनाए के रखी हो अगर उहू का बासी लगी हो तो वैसे महसूस हुई भाई करी
1: अच्छा सखी एक बार बताइए हाँ,
0: अच्छा ताजा जब खाना खाओ
1: हाँ
0: है नी और रखा वाला खाना जब हम लोग खाओ जाता है जी का कहा जाता है सवेरे के संझा बासी और जब ताजा बना के खाओ जाता है तो वहाँ क्या महसूस होता है आप बताओ
1: उमा देखो ताजा जब खाओ
0: हाँ।
1: थोड़ा दो चार और कदम जैसे दो चार कौर ज्यादा खा लो
0: हाँ।
1: अच्छा लगत है ना और भी अच्छा से खा लो लेकिन बासी रहा थे तो ना इतना खाए मन थोड़ा सा खाओ अच्छा हम चेहरे की बात करी
0: थे बस उदाहरण आपका हम दिया है ना सखी उदाहरण दे दिया है कि जैसे बासी खाना जब खावा जाए है नी और ताजा खाना खावा जाए वो लेप का हो तो हम लोग ताजा बनावा जाते है और जितना आपके चेहरा में काम है उतने हिसाब से बनावा जाता है अब लेप बना लिया गा लगा लिया गा उसके बाद धोए जब जब फिर से लगावे होते तो हम लोग फिर उसका बनावा जाते ताजा बनावा जाते तो बातें दूसर रहा थे ना और उसके साथ साथ जैसे कहा जाता है सवेरे जब हम लोग सोए उठा जाते हैं मुँह तो आप एलोवेरा रात में लगा सकती हो
1: हाँ।
0: सवेरे मुँह धोवागा
1: हाँ।
0: है और फिर जब हम लोग सवेरे उठा जाते हैं मुँह धोवागा सफाई करागा उसके बाद फिर भी जैसे घाम में रोज चला जाते है सन क्रीम नहीं लगा पावा जाते या सन क्रीम कोई कोई लगाओ तो कोई का रिएक्शन कह जाते है या उसका जोन सूट हो तो वो सन क्रीम खरीद के लगावा जाते फिर भी अगर इमरजेंसी के खातिर घरेलू दवाई के रूप में जैसे हम लोग रोज साग सब्जी खावा जाते सकी ठीक है खाती हो कि नहीं खाती हो आप
1: नहीं हम कहाँ खाए थे हम तो घास चली थे
0: ठीक है हम नहीं बदली थे
1: खाते मतलब नहीं सखी मेरे के बात कर रहे थे लगा था हम हवा पी थे
0: हवा नहीं पे थे हाँ। मतलब अगर साग सब्जी के अंदर
1: है,
0: हाँ बस वही पिए लेकिन अब क्या है वो हवा लेकिन हम सोचे थे कि आपसे
1: पानी भी
0: अभी डिस्कस ना करिएगा
1: तो आप इसे बातें पूछो तो सखी आप
0: अच्छा तो ठीक है टमाटर तो सबके घर में रहा था ना बात ये है का कारण तो पहले समझो
1: टमाटर तो रहा
0: टमाटर रहा था वो टमाटर के रस हम लोग निकाल लीन जाए
1: हाँ।
0: है ना थोड़ा सा एक चम्मच डेढ़ चम्मच रस
1: मतलब
0: निचोड़
1: के
0: निकाल लीन जाए टमाटर के रस में थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा शहद आधा चम्मच शहद और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी मिलाई के अगर हम लोग लेप लगा लीन जाए 15-20 मिनट तक ओके बाद सफा पानी से धो लीन जाए तो जो हम लोग के चेहरा जो घाम में निकला जाता है थोड़ा ड्राई काला जोन हो जाता है जैसे अपने आप का लागत है ना कि ड्राई हुई गवा है तो उस समय में हम लोग प्रत्येक दिन अगर ही सवेरे करा जाए तो हम लोग का सन क्रीम लगावे जरूरत न पड़ी
1: अच्छा,
0: जो घाम से हम लोग के मुरझावा चेहरा रही वो धीरे धीरे उजाला आई जी
1: टमाटर के रस
0: बहुत बढ़िया चीज होते और साथ हम लोग के बाल के लिए भी बहुत बढ़िया रहा थे बाल में भी हम लोग रस लगाए हाँ एलोवेरा में घोर के मिलाई के हम लोग जर्जर में मालिश के 10-15 मिनट के बाद शैम्पू कई सका जाते है तो टमाटर के रस चेहरा के खातिर बहुत ही उपयुक्त रहा था जो हम लोग के आंखें के नीचे जो करिया घेरा रहा था डार्क सर्कल कहा जाता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते
1: हैं। तो सखी जैसे कि सनस्क्रीन के मतलब सन क्रीम के काम करते है ना, टमाटर के रस,
0: हाँ टमाटर के रस सन क्रीम के काम करते
1: है, तो वही बात है ना। हाँ तो साथी आप लोग भी, अरे जितनी सखी लोग हैं आप लोग भी सुनागा हमरे सखी जो बताई ने, तो जो है आप लोग भी जो घर घर में मौजूद रहते सबके टमाटर।
0: हाँ हमारे सखी गुस्साई गई रही, कहते रहे कि हम घास चरी थे यही मारे पूछे के कह रहा है कि मतलब घर में साग सब्जी तो खावा जाते है लेकिन विशेष का होते टमाटर प्राय घर में रहा थे है ना, तो क्या करे के चाहिए। अब टमाटर तो टमाटर रही लेकिन अब
1: रस लगा जैसे, अरे वो सनस्क्रीन के जगह पे यहाँ रस टमाटर के रस लगाए के तब कहीं जावा जाए घाम में मन निकला जाए।
0: हाँ ठीक है टमाटर रस लगाए के ना निक रह जाए,
1: नहीं
0: टमाटर के रस लगाए के ना निक रह जाए। आपके बात तो हमको बहुत बढ़िया समझावे पड़ता है, को उल्टा हो जाते है
1: आपका लगा था कि हम
0: का पता अबे बाद में कही दो काल कहूँ चेहरा में कुछ इन्फेक्शन हो जाए उल्टे हमें कर सके। आप कह रही हूँ तो घर वाले भी साथे साथे आए के हमका मारे लगे कि मेरे कहे सिखाए रही हूँ,
1: मतलब आपके मारे सोचो तो
0: सही ढंग से सही ढंग से उपाय का है
1: टमाटर के जूस लगा के बाहर चली जाइए
0: नहीं ना जाए। हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, हाँ ये बात तो सही बता, आप रस लगाए के कहाँ जाइए बाहर, हाँ चेहरा हल्का फुल्का तो मेकअप करे पड़ा
1: ही, तो आप जैसे कि टमाटर के जूस लगाए के थोड़ा रुक जाओ है ना, इसके बाद मुंह धो के तब जाओ है ना।
0: हाँ मतलब आपका जाहिन का है तो जाओ, लेकिन मुंह धो के जाओ
1: ना सकी।
0: ठीक है तो अब यही बात पर कुछ सुनाए दो
1: अब। हाँ ठीक है सुनाए देवे, बस थोड़ा सा ब्रेक की तरफ चला जाते हैं।
0: ठीक है चला जाए ब्रेक की तरफ।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना,
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलीजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-3479 र 98480-21380।
4: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए इके उपचारों भी संभव है, वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
5: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
4: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
5: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध होए। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
6: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
7: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
6: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
7: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
6: कस्तो खबर?
7: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
6: ए साँच्चै?
7: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
6: ए त्यो त झन् राम्रो
7: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य MBBS, MD KU, IVF स्पेशलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS, MS KU, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
6: वाह अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
7: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ईसीजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
6: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
7: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
6: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
7: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा कहीं आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोच्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आईबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98-61-14-16-99।
5: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर दमदार परफॉर्मेंस र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्फ सर्विस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
1: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
5: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
1: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
5: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
1: अनकल सेवाहरू
5: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्ने अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ईसीजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिशा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी यौन टाउको रोग विशेषज्ञ बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म
5: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
7: हाय रे दिदिया हमार टिहुनी बहुत पीरा थे बहुत दवाई कराए डाले नाई ठिका थे।
8: सुनो बहनी खुशी के खबर
9: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
8: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यह मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई पित्त थैली के पथरी अपेंडिक्स हार्निया हाइड्रोसील बबासीर फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग ब्रिय और अंडकोष और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो हाथ गोड़ करियाओ रीढ़ टिहुनी पिराप झंझनाहट हो नस पिराप झमझमाप हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी निसंतानता गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ
11: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए संपर्क नंबर 081-531-1000।
12: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
13: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
12: विशेष सुविधा।
9: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
10: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।
14: हाम्रो गाउँ हाम्रो शहर सफा सडक गुणस्तरीय शिक्षा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र विकासका नयाँ सम्भावना
15: यी सबैको बलियो आधार हो हामी सबैले इमानदारी पूर्वक तिरेको कर।
14: समयमै कर तिरौ जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउ
15: किनकि आजको हाम्रो करले नै भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ।
14: कर तिरौ समयमै विकास गरौ सँगै
15: कर हाम्रो दायित्व समृद्धि हाम्रो लक्ष्य।
14: आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज र रेडियो कृष्णसार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: अब कार्यक्रम के भी हम लोग अंतम अभी आवे लगा गा है ना।
1: हाँ कार्यक्रम के अंत में आवे लगा गा। हाँ समय
0: समय
1: खत्म होए
0: लगा
1: लगा।
0: हम लोग और
1: हाँ
0: चाह तो नहीं जाते कि हम लोग साथी लोगन से बातचीत करा जाए और न जावा जाए है ना। नहीं चाह जाते हम लोग ही चाह जाते कि साथी लोगन से बात करा जाए
1: कोई
0: और
1: बात नहीं
0: जावा जाए।
1: श्रोता, हम चाहिए थे आपसे बात करे खातिर कि जत्ते आप टिप्स नुस्खा आपके पास भी हो।
0: हम जानित रहे कि आप कुछ ना कुछ सोचियो जरूर, वही मारे हम थोड़ा दूसरे मेर के बोले रहे।
1: कोई बात नहीं, ये अगर नहीं चाहते हैं इनका जल्दी
0: हम चाहे देन हम नहीं चाहते कि आप लोगन के साथ छूटे और ऐसे बात बात कही करते रहा जाए।
1: हाँ,
0: लेकिन हम खाली
1: बात ये है
0: सखी का चिढ़ावे मारे।
1: लेकिन अगर हम यही बात कही कि हमका छूटे है या फिर जैक मन नहीं तो कहिए कि टाइम होएगा है सखी, अब बहुत टाइम एकदम करीब आएगा है सखी, ये जरूर हमका कहती।
0: तो लेकिन टाइम के देखो हम एकदम देखो टाइम के एकदम पाऊ है इनका एकदम
1: का हो? अब वो हम आप सोच के बताओ, पाबंदी तो अब कह रही हूँ आप
0: तो
1: टाइम के एकदम पक्के हैं।
0: हाँ,
1: हाँ टाइम के एकदम पक्की हैं कि 3 बजते हैं हमका लोगन का आप लोगन से अलग होइक पड़ जाए। वो तो सबको जाना जाते कि कार्यक्रम हम लोगों का कार्यक्रम अनुसार तो समय के अनुसार आवत में चाहे देर हो जाए लेकिन जायद में देर न हो दे है। कैसे आवेक तो हमारे लोगों के गलती रहा थे, नीचे ऊपर हो ही जावा जाते है और जाए टाइम में घड़ी आगे रहा थे स्टेशन आगे है ये जा हमका लोगों का माइनस होइक पड़त है।
0: हाँ,
1: तो श्रोता
0: दूसरे का मौका दिया जाए।
1: हाँ तो श्रोता आप लोग जैसे हमने सखी आज सुना गा हुई कि त्वचा के बारे में हम लोग बातचीत करेगा तो त्वचा के माने कि हम लोग जो घरेलू दवाई जो घर में रखा गया है जैसे घर में बहुत सी चीज़ें हैं और भी हैं ऐसे जैसे है बेसन चना के बेसन हम लोगों के छाला के खातिर चेहरा के खातिर बढ़िया होते हैं। ऐसे आप फ्री टाइम में बैठा गया है तो जैसे खीरा आजकल खावा जाता है गर्मी में पानी के तासीर खीरा में ज़्यादा रहा थे तो खीरा का एक एक कल्ली काट के आप 10-15 मिनट आँखी में भी रख सका जाते जिससे क्या होते ठंडक भी मिलत है तरावट मिलत है और आँखी का एकदम तरोताज़ा रखत है। ऐसे आप सफ़ा रुई में कॉटन जो होता है मेडिकल कॉटन सफ़ा रुई में गुलाब जल में भिजोई के 10 मिनट तक आँखी के ऊपर रखा जाए तो आँखी एकदम का होता है अपने आप का जैसे हम लोग कभी कभी का हो जाता है कि आँखी की वजह से भी लगा था मुरझाया था ना चेहरा हो जाता है ताजगी नहीं रहा थे तो आँखी का भी ठंडक देख खातिर तरोताज़ा रखे खातिर हम लोग गुलाब जल आँखी के ऊपर रख सका जाता है। और उसके साथ है जैसे आँखी में डार्क सर्कल कहा जाता है जो उन काला घेरा कहा जाता है उसके खातिर सबसे सही उपाय है कि हम लोग आलू जो सब्जी खावा जाता तरकारी जैसे अभी सखी हमरे कहना घास खाई थे तो फिर से आलू के नाम लिया इमारी इनसे हुकारी न भरवई भे कैसे समय अंतिम में हम लोग हन
0: तो
1: आलू का काट के जैसे आलू का भी हम लोग आँखी के ऊपर रख सका जाते है जो आलू के रस रहा थे उसका रस निकाल के मतनी गुलाब जल मिलाई के एलोवेरा मिलाई के उसका हम लोग जेल अपने आँखी के चारों तरफ भी लगावा जाए 10 मिनट के बाद उसका धोई सका जाते तो इस सब चीजन से भी आँखी का होते कि आँखी तरोताजा तो रही लेकिन चमक रही लेकिन आँखी के किनारे जो घेरा रहा थे काला वो हट जाते है। तो आलू के रस हम लोग चेहरा का तीर और चेहरा के जो छैया वो थे उके खातिर बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा थे और बाकी तरोताज़ा रखे खातिर फ्रेश रखे खातिर आपके पास फैक्स पैक में सबसे बढ़िया उपाय है कि आप मुल्तानी मिट्टी लगावा जाए जिससे हम लोगों के चेहरा तरोताज़ा भी रहे ठंडक भी दी और हम लोग चेहरा से एकदम क्लीन सफा रहा जाए। तो सखी यही कहते हैं अब हम लोग विदा दिया जाए आप पहले हाथ जोड़े ऐसे करो तो संकेत दे तो हमका कि हम जल्दी चुपाई और हमने सखी कहा कि अब चला जाए है नहीं। तो श्रोता आप लोग अति देर तक कार्यक्रम सुनाएगा 3 बजे तक साथ दियागा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे अगले हफ्ता शायद सखी भूली हैं हम लोग के अब महीना के अंतिम शनिचर रही जो कि
0: अच्छा,
1: फोन इन कार्यक्रम
0: हाँ।
1: रही जी के वजह से आप लोग जाना जाते हैं कि महीना के अंतिम में हम लोग फोन इन कार्यक्रम में आ जाते तो आज ही हम लोग बतावा जाते हैं कि आप लोग फोन से प्रत्यक्ष हम लोग से जुड़ा जाए और जो भी कुछ समस्या भी हम लोगों का आप लोग सलाह भी दे सका जाते कोई बातचीत करे विषय वस्तु भी दे सका जाते जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करा जाए जो कि हम दो जना के जानकारी की वजह से आप लोगों के पूरा हर जगह जो FM सुनते हैं हर जगह एक जानकारी प्राप्त करें। तो सखी यही कहते फिर से फोन नंबर और फिर बताए के फिर हम लोग विदा लिया जाए।
0: तो साथी आप लोग जो है अंतिम मतलब महीना के अंतिम शनिवार के दिन जो है कार्यक्रम से जुड़े के खातिर संपर्क फोन नंबर आप लोग सुन लिया जाए। तो संपर्क फोन नंबर है 081-415-122 और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 00977-81-415-122।
1: हाँ तो अभी
0: तैयार रहा जाइए
1: अगले हफ्ता फिर हम लोग आप लोग से डायरेक्ट हम लोग बातचीत करे खातिर हम लोग तैयार होके जल्दी जल्दी नावा जी बैठा जी। और उसके साथ साथ जो हम लोग के आज के कार्यक्रम में जो संक्षिप्त हम लोग वीडियो भी हम लोग डाला जाते हैं, जैसे फेसबुक कृष्ण सार के एप्स है उमा डाला जाते है, म्यूजिक हर में डाला जाते है और यूट्यूब में भी जाते है। ऐसे कई प्रकार के ये कार्यक्रम थोड़ा रिकॉर्डिंग आप लोगों के समझ बाद में भी हम लोग पोस्ट करा जाते हैं, अपने व्यक्तिगत आईडी से भी करा जाते हैं। तो ये सब जानकारी देते हैं, आप लोग जरूर ध्यान से सुना जाए और हम लोगों का लाइक कमेंट भी करा जाए, हम लोग का सर सलाह भी दिया जाए। विषय वस्तु भी कोई जरूरी चीज है जो आप लोग के समाज में जो कि हम लोग का चर्चा करे एकदम जरूरी है, वो विषय वस्तु भी दे सका जाते हैं। तो यही कहते हैं हमारे सखी का बहुत बहुत धन्यवाद है, गीत संगीत सुनाई ने हमारे खातिर आज इतना फूल बरसाई ने, तो सारा फूल आप लोग के समझ भी हम भेजी थी कार्यक्रम द्वारा।
0: और
1: यही कहते हैं आप लोग से हम लोग विदा दिया जाते लिया जाते नमस्कार
0: नमस्कार
1: राम राम शुभ दिन।

0: वात्सल्य हेल्थकेयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: हमार घर त मजा बा मने ई पुरान फर्निचर के सामान से घर चमक घटा दिहल जैसिन लागटा
2: हो त अब त घर के लावा चमक देहे

0: सकै अपने QR।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दात तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचार दाँत सफा करने, दाँत भरने, दाँत निकालने, दुखे दाँत को जरा को उपचार, खाली ठाव में दुरुस्त प्राकृतिक जस्ते नक्कली दाँत राख्ने, बांगो टिंगो तथा नमिले दाँत फिक्स अर्थोडेन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाने, गिजा को रोग जस्ते गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दो हमका।
7: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
6: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
7: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
8: नींद ना आए हमको, हाय जग सोना है।
6: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
7: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए, करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करे बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कैके कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए, करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सरसलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए, करावा जाए।
6: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए, करावा जाए।
7: तब आवश्यक सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले ग्रामीण लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ब्रामिल उनके इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
9: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दर मत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
9: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
9: सुनो। हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया एपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यूँ गिल्टी और तमाम मेयर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
9: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649-11786 98224-92377।
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुस् त, पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
2: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डालें, नाई ठीक आते।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
7: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोष और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जाना थियो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
9: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बाँके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
10: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
10: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
11: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
10: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
10: सम्पर्क नम्बर 081-535-717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगंजमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालको लागि कहाँ जाने होला?
11: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि, नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
10: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
11: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
11: नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक सामुन्ने राप्ती रोड बाके संचालक पूरण चौधरी
10: सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858223697 र 9800143697
11: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ नियमित कानको जाँच गरौ
2: Back to back.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: से 18 गते तक ट्रैफिक सचेतना मूलक कार्यक्रम संपन्न हो चुका जानकारी करो थे। सचेतना शुरू मिति से 60 दिन बाद ई रिक्शा लाइसेंस के बिना ई रिक्शा चलावे न पावे हो से तब तक नागरिकता के प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में यहाँ साथन रख के ई रिक्शा चलावे का अनुरोध है। साथन उप महानगर पालिका से लाइसेंस के खातिर फार्म भरे और परीक्षा तैयारी के खातिर निःशुल्क कक्षा संचालन की है। फार्म भरे खातिर नागरिकता ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट और मोबाइल नंबर साथन लेके नेपालगंज उप महानगर पालिका में यहाँ संपर्क करे। संपूर्ण ई रिक्शा चालक लोगन के यहाँ अनुरोध किया जाता है। ई अभियान मिति 2083 साल जेठ 26 गते से 2083 आषाढ़ महीना के अंतिम तक रह बेहोरा जानकारी करावा जाता है। संपूर्ण नगरवासी ई रिक्शा सवारी धनी और चालक लोग उप महानगर से हाथ में यहाँ हाथ मिलाई के नेपालगंज के यहाँ सभ्य सुरक्षित और व्यवस्थित बनावा जाए। संपर्क के खातिर रवि महाउत नगर प्रहरी जवान मोबाइल नंबर 98225 82983।
1: यो कृष्ण सार FM
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: ओहो झपास करे छ यहाँ त
1: हां छपास हो ना जाऊ ना मैं यही बाइक पार्क करत हूं यहां छपास रहल से तनी कम बा चली जाई
0: बैठा बैठा राजीव
1: जा हुई लसे फे हमार बर्दिया जिला का जयनगर मेला में चक्रा ना उठाई लसे फे कम ने भी कलर बाहर बाइक धरना ठाम छपास रहल से फे यहां मेला में चाहिए नहीं रही छ
0: उट हो ना राजीव कहाँ कहाँ से टीना फलफूल भाड़ा कुरी मेकअप का सामान बेचुया वो किनुया मने आज इठना
1: हो त हमार कसिन व्यवस्थित बा सफा के बा आंजर पांचर कीड़ा मच्छर माछी सांप ना आइ कई का छपास पे सफा कर लबाट
0: उट हो राजीव अब हमार जयनगर सुंदर जयनगर हुई ना कर से हुई
1: अनि रंजनी खास मत महीना म्याला का कर नंदो का सामान तो हाथ कुछ किन्ना बा अपना सट नीलागत महीन
0: खास मनि हुँ कुमार महिया न लक्कै से जो सबले रुवा बेन बजाक साँप नचैल एकदम मन पर्था का ओ वर्षी म्याल मैले खैलक टुहीन बेन हो जाइन मनै जुटल बाट पक्क फे सबले रुवा बेन बजाक सब नचैटे हुई जाइ यार
1: रहर पे काका लग्न पिन्ट मै त छट्टियामा सब कटल पर्से हुई डर के लक लक ठा कलक
0: यार कुछ डर मानमी परिका हुँ कुमार सबले रुवा कत्रा मजा से सब बहाना मोहनिया खसम मोहित बना कर नचैन करता चलो का जाए
1: लेनी जाए तो
0: ले हेरो तो हम कुमार सबले रुवा बेन का धुन में कत्रा मजा से सब बहाना नचै जीवा आपन सब तो डोमिन्या हो जसिंदा
1: हां हो डोम सब जो हो तर आसी का सपन बेन बजा का सबले रुवा नचैलक मही चाहि एकदम दुख लागत का हेरो बिंदु सब कु जिनवारन का अपन अपन अधिकार अछिनी स्वतंत्र होकर बाँच पाए पड़ता सापन के पेटा आपन अधिकार बाटी नहीं हो कि नहीं हो कह
0: उटा तो ठीक कर लो कुमार
1: आमन अपन मनोरंजन का लाख पस्सी का बिन पर बुनवा मोहित बनाकर और जहां मनोरंजन देना था एक को फिर ठीक नहीं लागत नहीं था वाकर ऊपर सापन का पेटा आपन विशेषता बाटी नहीं था खेतवा मा का मुस्खा का बाली नाली का रक्षा करता आमन जैविक विविधता हना संतुलन मनन था
0: उटा महीना फिर हाँ बाका हूँ कुमार देवटू कहा तो कलसी आसी सांपन लट्ठ बना कर नचेला खेलना बंद कर आप तो खुश
1: ये बात तो सही कर दी नहीं अपना यह बात में आज दिन में टटला टटला जेरी खोएं
0: ओहो जेरी बैठा बैठा खाए ना तो
1: बैठा अनि जेरी खा कर घरों और लागा पड़ी ना पानी आई ना सूची बा
0: बैठा हूँ कुमार ओहो हूँ कुमार जेरी पूरी ओटल कारी बास कटरा मिटाइल हररा
1: आप हिंदू पे का बात कर सी ये जेरी पूरी वो तरकारी को होटल जयनगर साधु बाजे को होटल जयनगर बाजार में ओल्ड फेमस बा अनि अत्रा लॉप लक्की को बास आई ना नहीं रही था
0: उठा हो तर जावस ये साधु बाजे होटल का चाहिए ना उठा ही परी कत्रा सफा सुगर करे लगा था सबको खाना बन छोप कर डर लगा था माचे बन कर नहीं देता आवन कत्रा ताजा ताजा तरकारी स्वादिलो ओ मीट तरकारी दिखा कर खोई था जेरी का तो का बात बटोइना हो ना हो हाँ
1: आप जेरी पूरी और तरकारी का नाम किला उठाना हो कि खाईना से हो मैं तो खाई थी ना
0: मीठा मीठा तत्ला तत्ला जेरी तो खेलक मज्जा और रखलक कत्रा स्वादिलो स्वस्थ कर मैं तो और फैला मेला इन कल से फिर जेरी खेल
1: मीठा
0: अनि जेरी ना उठाई उठाई तुहार फिर एक ठो बाटक तो बड़ा तारीख करना को मन लागल था
1: कहा बात को बिंदु
0: का कलसी ना तमन्ना सबले रुवा बेन बजा खा डोम सब पहान लट्ठ बना खा नचै लग देख्नु त कत्रा संवेदनशील हो खा हरेक जिनवार का अधिकार उठा स्वतंत्र हो खा बाँच पाई पर था गई खा सुनबेर बड़ खुशी लागल बा
1: ए हो नै बिन्दु मैं त छट्टिया से कौन के जिनवारन अपन मनोरंजन कला प्रयोग कलक मन नि परत
0: कसिन मजा विचार हुँ कुमार तुम्हार मैं तो तुहिन से प्रभावित जो हुई तर सबले रुवा कत्रा सजिल से सब पहना अपन बस मधर सिक्नु का कटना के निकटना
1: उटा हुँ पुरा पहिला जो सुरक्षा का सबको मापदण्ड पूरा करल रह नि त अनि सबका कटल से बिस्ना लाग कैख सबक सबको दाँत निकाल दे रख त अनि कहाँ से सबका कटल से बिगार कर से कि त
0: उफे हो ना तर फिर असह्य का जो सबको सुरक्षा के मापदण्ड पूरा कर सकल से त सर्पदन से बिना छेटी कम कर सकने दीजिए ना
1: हो त का दिन से अपन जुट्टा घरना से आग जुट्टा में कुछ बाकी कई का हेलर हटकल से वही ना जुट्टा में अनुक का बचला करे सा सब पटने नहीं रल हिस हो कि नहीं कहोटा
0: हो निका वो वर्ष तो अनाज भंडारण करना क्वाठा वो काठी धरना ठाउ वो बिलाम सांब बैठल रह सकता हमरा होशियार रह पड़ता ओ जुट्टा लुगा भन्ना स्याएको फेरि मजासी जाँच गर।

0: आमन पैरा पुरटियावा टवा मसे पैरा तानाबे ध्यान दे पड़ता डोमदा सिंह सप भिटर नुक्क बैठला सेक्टा ध्यान खास खल्टीमा टुक्क डोंडामा हात जगाय नि हुई पोसेका काल मकाल की भाई पर जाति नि देख पर सेक्टा वह हुइला कोर्से खास काटबे ध्यान देखा काट पड़ता
1: होनिका आम साफ नुक सेकना ठाउँ मसे ल्याङ पर्लसे वा काम कर पर्लसे शब्द अतिरिक्त होशियार भी पर्था खेतवा झपाज ध्यान घास हुइला ठाउँ मसे ल्याङ पर्लसे नम्माला ठिके खनेगी रातिक समयमा बाहिर निक्र पर्लसे वा चर्पिकर जाइ पर्लसे जैहा फे टर्च लाइट पार्ख ओ नम्मा लठी देखके रजाइ आपन आजर पाजर साँप रहलसे साँप भगाक्राक लठी मदद गर्था हो कि नाही घुम कुमार
0: हो निका बिन्दु लेउ मिल्ने फे खा गइल आप लग्न हो कि घर हो बिन्दु
1: मिठा आप जाइ
2: ए मोरे छैना यादन करि पहिले ए मोरे छैना यादन करि पहिले
0: नाहि बिन्दु कत्रा ठिकठाक बनाएको पानी आइ लागल छट्टा जाइका अब पानी आइ पलासे पुरा भिजा डारी
1: लेउ लेउ ओरा गेल का हुन कुमार
0: हेरो ना फेर कहाँ झपासो ठिकठाक बनाइकी जाइ लगल खटा साँप रहस एकटा काटी कर से तम भक्कर ओतरा बात बतैलक नि हमरा फेर अंधार पे हुई लाक्षा कल
1: ओट ना मै आ गइ नु ली बैठ तू बाइक म
0: बैठ बैठ जाय तो आप
1: बैठा अनि थाहा बा हुन कुमार आज मैडम घुमाइ ल कइ ख इह बनै ल टिक टक धर परी लाइक पर हो ना
0: हो जाय नि उट
1: अनि सुनो त दगदी म दिनेश के घर पर थन हुकहिन सर्पटन सक सुई लगाइल पाछ हुकार स्वास्थ्य म कसिन सुधार हुइति बाटन कना हाल खबर पुछ जैना पो हो कि
0: हां बात त ठीक कलत पर हम सर्पदम सक केन्द्र से लेखाइल पाछ भेटनि लुटी हमरा जाय न त एक छु भेटि दिनेश न पानी झमकनास परि कल से दिनेश का रेनकोट मांग कलै जति तनि भी
1: बिठा बिठा
3: छोटी रहबेर हुँ कुमार न सप अकटक विषयमा बिन्दु हुँ कुमार मेला जाइबेर बाट बटुल हाम्रो पशु अधिकारको फे ख्याल करपना सन्देश आज उनीहरू डेलबा कनमर बुझाइबा पुष्पाजी
4: आफ्नो बुझाइमा मै फे सहमत बाटु एकराजी साँप नचिना मनै फे सापनको अधिकार ख्याल कर पठा कलसे सापनको दसैँमसी आफ्नो ओ दर्शक मुकन बचाइक्लाक सुरक्षित उपाय फे अपनाइ पठा कनामर तर्क भो मै फे अब रातिक समयमा घर बाहर निस्क परल कलसे टर्च लाइटकसँग नम्मा लट्ठी लेख पुगेमा ठ्वाक ठ्वाक बजेटी न्याङ परि
3: बिन्दु हुँ कुमार बाट बटुटी बटुटी आफ्नो त व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पो कल लगिट पुष्पाजी
4: मै केल नै एकराजी हाम्रो सबैजना सर्वदल से सुरक्षित रहलाक प्रतिबद्धता गर पर्था ओ उहो प्रतिबद्धता अनुसार पूर्व तयारी वा सावधानीको उपाय अप्नाइ पर्था सपदसलक पाछ उपचार केन्द्रमा पुग्लक दिनेशको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा थाहा पाइक्लाक बिन्दु होम कुमारक अरू भाग सुन जिन भुलिबिन
5: अत्र बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्ति बाटी
4: सहभागी श्रोता यही विषयवस्तु हो छलफलकसँग रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशका आज यी भागमसे मै पुष्पा
3: ओमै एकराज बिरा मन्दी औरो अङ्कमो सापन घटसाइमसे बच्दा उपाय विषयमा नवो जानकारी लेख ऐनी चोबाटी आजुकला बिराटी
4: नमस्ते यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान अतिथि हुक र बटुलक उहाँहुकनक निजी विचार मान्जाइने बा ओ नेपाल सर्वदंश रोकथाम परियोजनक तर्फसे अभिव्यक्ति हुइलक आधिकारिक विचार गैख माननी हुई
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत
7: यो कृष्ण सार FM
8: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: California. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएक लाख किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकी के विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसलाह वो जानकारी के लाग लगभग संगे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी